जाबे गहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जदू ए खालसा पंडतां दियां रीतां ते तुर पिया भाव, अपने असूलां तो जदों ए पिछे हट गया ते फिर ए दे विच मेरा तीज नहीं रहेगा, फिर इन्हां दा राह वखरा ते मेरा राह वखरा होगा। मैं खालसे दे विच उदों तक हां जदों तक खालसा मेरे असूलां ते रहेगा, ते जे इन्हां दा असूल कोई नहीं ते फिर ए मेरे कोई नहीं। आखो सतनाम श्री, क्योंकि गुरु साहिब जी जो कहिंदे हन पहला ओ ते फिर रहतनामे संसार दे विच। पीर पैगंबर ते बड़े हुए, पीर पीर रहे, सेवक सेवक, भगवान भगवान रहे, पुजारी पुजारी, पर गुरु नानक दे घर गुरु चेले बन गए ते चेले गुरु बन गए। आखो सतनाम श्री वाहे। और इत्थों तक कहा

मरूं जे रस ना पाऊं, मेरे शरीर ते जिन्ने रोम ने एक शरीर ते करोड़ा रोम होंदे ने। जिहड़ा साडा शरीर है करोड़ा रोम होंदे हन हर बंदे दे शरीर ते। ते साहिब जी कहिंदे ने इह जिहड़े मेरे शरीर दे रोम ने करोड़ा रोम, ये सारे जीव बन जाए। रोम रोम जे रसना पाओ तदप खालसा जस तैगा। इतनी वड्याई दीती, मेरे शरीर ते जिन्ने रोम ने ये सारे जीव बन जाए ते इन्हां करोड़ा जीवां दे नाल मैं खालसे दा जस गावां। आखो सतनाम श्री वाहे। ये वड्याई दे रहे।

इतनी बढ़ियाई दी थी और इतों तक चले गए। कहने लगे खालसा मेरी जान की जान। और इस तू पहली पंक्ति खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। पिंड कहंदे ने शरीर नू, खालसा मेरा शरीर है, खालसा मेरो पिंड प्राण, और खालसा मेरे प्राण है, और खालसा मेरी जान है, खालसा मेरा मां बाप है, खालसा मेरे भैन भरा है, खालसा मेरे रिश्तेदार, और खालसा मेरा सज्जन मित्र है। और इतों तक कह देता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास पढ़िए, उन्होंने किधरे कसम नहीं खाधी। पर जद खालसे की गल आई तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे वास्ते एक कसम खाधी। की कहते हैं, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नु साखी रूप जान के यह कहना कि खालसे विच अकाल पुरख विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं।

सारे जाने ओदे चरणा दे नाल ध्यान लाइए, ध्यान नूं जोड़िए ते सरबत दा भला मंगिए। ते पातशाह फरमान करदे हन।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा ये मेरा ही रूप है। पर जदों ये भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वेष आ गई, इहनूं इह पता लग

बहुत प्राचीन मधुर अते प्रमुख रागों विचों एक है। इस विच ऋषभ अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। वाद्य स्वर धैवत अते संवाद्य ऋषभ है। इसके आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ पटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषभ अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। भैरो का वातावरण अति सुहावना हुंदा है। प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष का हंकार भन्निया। गुरु की करणी बारे फरमान है, मिर्ग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी की सूरमताई का भी जिक्र है, जिन्हां मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द का गायन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा

गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस विच सारे शब्द का केंद्री भाव है, भगत जी दसदे हन कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करके

सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत हैं। यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, वाहिगुरु परमात्मा। टेक वन स्टेप टूवर्ड्स हिम एंड ही टेक्स अ मिलियन स्टेप्स टूवर्ड्स यू। यू डू सेवा इन हिज नेम, डू चैरिटी इन हिज नेम एंड ही रिवॉर्ड्स यू 1,000-fold. You repeat his name again and again, and he will always be with you. Nanak Bhagat Ravdas says, I repeat his name again and again, and I never get tired of repeating his name. Satgur Dayanidh Mehma Agad Bodh Namo Namo Namo Namo Neth Neth Neth Hai.

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आउना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

भगतिया गई भगत भोले। जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोग माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया, ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पौनी भुल गई, ना उताल रहा ना उराग रहा।

खादी खुण सुजुगी सरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना जरा प्यार नाल सुनना। कहंदे ने खादी खून सुजो

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नु पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नु अपने चेले नु एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की लोड़।

0: बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरबिन ज्ञान न हो। ओ गुरबिन ज्ञान न हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता।
2: आसरा उस आधार का मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया।
2: अब मोरे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया। मन मारण कारण बन जाइए। सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी भी मन चल लग रहे थोड़े को हजारों यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता।
4: यह मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी। पानी की एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी।
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उथे गुरु अमरदास जी का दरबार है। गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदिया ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल?
2: एथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज सार सुबह नवाज गुजार। जो सिर साई नानी सो सिर कफल उतार। जो सिर साई नानी सो सिर की देखाए। उन्नी पैठ जलाए बालन संदे थाए। बालन संदे थाए।
5: ओ साहब जी की गल है पहला तुसी नहीं गया रही सर।
4: असी किस तरह जानते सोचदिया पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी?
4: सारे मुसाफिर ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है पर असी साढ़े कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: ओ चलिए भैने मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता। मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां?
5: मेरिया लोड़ां? मेरिया लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है तो हो तुम चाहिए भी की जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना। दिन वेले बेड़ी चलाना तो राति लंगर चो ढिड भर के बाहर थड़े दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
4: धन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब न अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है। और दर से जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस अवगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदो आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइया मजिया आ दूजे दे खेत विच छड के सारा खलियान खेत खराब कर दिता। एदा हरजाना पर भाई तेरा पुत्र है ना नानक। मेहता कालू कहन लगा ए ता है ही निखट्टू, कोई कम कार नहीं करदा, वेले बैठा रहंदा है। एक काम इस नू करन वास्ते भेजिया सी, ओ भी उजाड़ के आ गया। क्यों नानक इवें क्यों कीता? मेहता कालू ने जदों पुछया ते गुरु नानक सच्चे पातशाह बाल अवस्था विच कहन लगे पिता जी इदे खेत नू ता कुछ होया ही नहीं, ए इवें आके इत्थे शिकायत करन आ गया, इदी खेती नू कुछ नहीं होया, इदी खेती ता उसे तरह लहलला रही है। सतसंगत बोलो श्री हरी परी है। ओ कहिंदे नहीं मैं अपनी अखां नाल वेख के आया, चलो मेरे नाल। ते सारे जदों कठे होके उत्थे पहुंचे

कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। सिपाही जयराम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी, कहन लगी इवें ना आखो, मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कौतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों

आख्या इस पासे मेरे खेत हन करतारपुर विच मैं उना नू पानी पा रही खेती नू। पंडित कहन लगा कितनी कु दूर है आख्या कोई 400-500 मील होना इतो। आख्या तुहाडा एक लोटा पाया पानी ओ खेतां तक पहुंच जावेगा। साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पवोगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना। उधार तां प्रभु दे नाम ने करना। सत सिखत बोलो श्री बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरा वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या करदे सन भाई आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना ए सारियां सिफरां हन सिफरां ए सारे जीरो हन। और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते 10 बन जाएगा। 2 जीरो पावेगा 100 3 पावेगा 1000। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड हन जप तप हन बिना नाम तो जे ए करेगा ता तेरे मन नू हंकार हो जाएगा और कीते हुए तेरे कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्म कांडा दा वही मुल पैणा। सात सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन देव पातशाह बाणी विच कहंदे हन प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका